0: माय शक्ति, आज पहली बार तुमने काम की बात की है।
1: They go in one way, they come out crazy.